0: ने की अलकपुरी जी महादेव देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

आराधना की। सो द सेम शिवा एंड पार्वती दे वेर पासिंग थ्रू वन विलेज। इट इज सेड द स्पिरिचुअल डिवाइन इनकार्नेशन ऑलवेज दे लुक यंग एंड ब्यूटिफुल। सो दो पार्वती वॉज वेरी

0: अलकपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
2: विश्व गुरु महामान्य स्वामी गुरुदेव
1: की जय।

0: कारणम निष्कंद मम तारणम। ओम शांति। श्री दीप नारायण भगवान अलकपुरी जी महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की,
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर
0: देवपुरी जी महादेव की।

0: सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महाशयनंद सूरजी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. Sure. Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You're here.
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

0: ओम शलपुरजी महादेव की
1: जय।
0: वादिदेव देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: श्रीदीप नारायण भगवान
1: की जय।
0: हिंदुधर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरजी सद्गुरुदेव भगवान
1: की जय।
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरजी योगराज
1: की जय।
0: नंदीश्वर भगवान
1: की जय।
0: शिव शंकर भोलेनाथ
1: की जय।
0: हनुमान पार्वती पते
1: हर हर महादेव।
2: शिव शंकर

0: When the clouds dispersed, water covered the thirsty land. This was the first verification of the rain harvesting project. The water flowed straight to the lake. The blood of life has been harvested. This is now a reservoir of life, not only for the ashram, but also for many villages in this thirsty region. Now was the right moment to reforest the hill with soils dug out from the lake. The hill will hold a tree. A tree will hold the hill. This is the symbiosis of sustainable development. As much as the rain was a blessing for the desert, it was also a symbol of blessing for the thirsty human soul, a blessing from an encounter with the king of spirituality, Holy Guruji. Sri Madhavanandaji, Swamiji's guru, is both the rain cloud and the sun, an eternally fresh breeze of saintly presence.
1: इसलिए सत्संग करना चाहिए और संतों के दर्शन करके गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। गुरुदेव का स्मरण सर्व पापों को धो के अंतकरण की शुद्धि होती है। अंतकरण शुद्ध करने के लिए प्रभु प्रार्थना और प्रभु का स्मरण और गुरुदेव की कृपा। लास्ट में कहा है गुरु कृपा ही केवलम तो शिष्य के परम मंगलम। जिसके ऊपर केवल गुरुदेव की कृपा होती है तो शिष्य के लोक परलोक में परम आनंद और मंगल हो जाता है। इसीलिए सतत गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। ये भजन गाते हो ये वेदों का सार है। ये तुम्हारे हृदय में वेद का सार यानी ज्ञान प्रकट होता है। साक्षात परमात्मा महाप्रभु जी के मुखार में

0: So in our scriptures, in our teachings, in our way of life, there cannot be any other great person than Guru in the world for the disciple and for the all the followers of the yogic way of life.
1: Tamso ma jyotir gamaya. Lead us from the darkness to the light. The very first day when the first resonance was awoken in the endless universal consciousness, where the consciousness was dormanted, the first was that resonance, the sound that was the Om, and through that sound, the second element, the second tattva, beside the akasha, the fire element was created. And that first very moment was the beginning of the Guru Purnima.
2: गुरु का मतलब है गुमन अंधकार रूमन है प्रकाश अंधकार मेट के अपनी भूल है अज्ञान है वही अंधकार है उसको मेट के प्रकाश देने वाले सत्य ज्ञान देने वाले अज्ञान को हटाने वाले वही सतगुरु होते हैं गुरुदेव को पहचानने वाले बहुत थोड़े भक्त होते हैं गुरुदेव को पहचाने वो स्वयं गुरु रूप परमात्मा रूप हो जाते हैं और गुरुदेव की कृपा होती है आत्मा का ज्ञान हो जाता है लोक परलोक का ज्ञान हो जाता है स्वयं भगवान ने मानव को पवित्र होने के लिए मानव को सुखी होने के लिए ये गुरु पूनम का पर्व बनाया है
3: Everybody wants to personally approach Holy Guruji and Swamiji, to see him and to be seen, to touch him and to be touched. This is a privilege of Guru Bhakta. Bhajans, the spiritual songs and odes to gurus, are sung all night on this night of an unforgettable full moon.

0: In this country, wherever Gurudev appears, he is accepted as a source of joy, a source of wisdom.
1: क्योंकि कहा है कि वंदो भारत वर्ष भूमि जहां सतगुरु दर्शन होए आत्म ज्ञान यहीं मिले और देश नहीं कोय। ऋषि मुनि सब संत जन और करे भारत की आस, भारत बिन मिलता नहीं आत्म ब्रह्म प्रकाश। श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश, माधवानंद आनंद भया पाया भारत देश। तो वी नीड ऑल टू हेल्प अवर सेल्फ टू प्रोटेक्ट द कंट्री। We need to protect the Sanatan Dharma, and we should and we must protect all religions. No religion should be discriminated. No any culture should be discriminated. No any country should be discriminated. We have to respect them as they are.
0: Finally, the day of ceremonial bathing has come.

0: परमार्थ जिनका धर्म है, संकल्प अधर्म विनाश है। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की, धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की।
1: बोलिए महेश्वरानंद महाराज की।
2: After the dynamic visit to Maharashtra, here we are again at the Jadan Ashram, in a place of peace, a peace needed for the depth of working with oneself, for the depth of yoga. Here, we come closer to the inner silence out of which all important answers arise. This ashram is a garden, an oasis of life.

0: बजाए तलवार बजाए।
1: यू कैन ट्राई मैनी थिंग्स अनलेस यू हैव नॉट कंट्रोल्ड चित्त वृत्तिस एंड दैट कैन ओनली बी थ्रू गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। देयरफॉर गुरुदेव बिना कार्य नाय शरे विदाउट द मर्सी द ब्लेसिंग ऑफ द गुरुदेव योर ऑल एफर्ट्स विल बी मीनिंगलेस। नो वन कैन हेल्प यू, बी श्योर, नो वन कैन हेल्प यू। ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ टू प्यूरिफाई योर माइंड, बिकॉज ओनली टू नोज, गॉड एंड योर सेल्फ। फॉर गॉड इज डजेंट मैटर, वाई शुड ही बॉदर। गॉड कहेगा ठीक है, बस गॉड सेड गुड, आई हैव स्टार्टेड दिस चराचरी का खेला, लेट देम गो इन एंड आउट, इन एंड आउट। बट यू नो दैट यू आर सफरिंग। देयर इज नो गॉड इन सच वे दैट ही विल कम इन माई चाइल्ड, कम आई टेक केयर ऑफ यू, नॉट इन दैट वे। बिकॉज इन द लेवल ऑफ द गॉड कॉन्शियसनेस देयर इज नो सफरिंग।
2: The fire truck and volunteer crew is another form of free help provided by the ashram. During the summer and harvest time, this crew intervenes up to 3 times a day. When it is a question of saving lives, property, and harvests, the crew knows not for tiredness. As Swamiji says, helping hands are worth more than hands that pray.

0: Even though physically absent, Guruji was inevitably the centre of all attention. A photobiography of Guruji's life was solemnly presented.
1: Swami ji, Mahatanand ji, Maharaj sahab to aaj hamare beech mein nahi hai kyunki wo swasth labh kar rahe hain jaisa bataya gaya. Par unka sandesh hamare beech mein hai, aapke beech mein hai. Lambe samay tak kaise unhone wo kaam kiye jisse ki aatmik sukh mile, आत्मा को शांति मिले, सद्भाव का वातावरण कायम हो. एक लंबा जीवन उन्होंने बिताया और किस प्रकार से वे समाज को, देश को, दुनिया को संदेश देते गए. ये सौभाग्य है पाली जिले का, देशुरी तहसील का और निप्पल गांव का, जहाँ वो पैदा हुए. उन्होंने महान संत स्वामी दीपनाथ जी की सानिध्य में रह के संकल्प किया और वही संकल्प संदेश के रूप में आप सबके सामने है.
2: टुडे विद अस लार्ज नंबर ऑफ अवर फॉरेन फ्रेंड्स आर ऑल्सो हियर. आई वुड लाइक टू एक्नोलेज देयर डेडिकेशन टू दिस इंस्टीट्यूशन. आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल फार्मर्स हियर दैट लुकिंग टू योर डिवोशन we are, it's really appreciable and it is amazing, it is beyond our thought and thinking.
3: तो बाबूजी मन से यहाँ हैं, तन से वहाँ हैं. गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, नशा पत्ता छोड़ो, जाति पाति का भेदभाव छोड़ो, सर्वधर्म का सम्मान करो, जिससे कि विश्व शांति बनी रहे, प्राणी मात्र की रक्षा हो और मानव का भी कल्याण हो. बोल श्री दीप नारायण भगवान की. धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की.
0: Today, our stay in India has come to an end. The heart of India is an ashram. An ashram is the home of the soul, and the soul of that home is a Gurudev. His word comes from an eternity and lasts for an eternity.
4: God is endless, and His glory is endless. He is beyond our imagination, beyond the borders, and beyond everything.

श्री दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की।

0: श्री अलख पुरीषा महादेव की
1: जय।
0: स्वयंभू बाबा श्री देवपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: विश्व वंदनीय भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की
1: जय।
0: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी जी श्री माधवानंदपुरी सद्गुरुदेव की
1: जय।
0: विश्व गुरु परमहंस स्वामी जी श्री महेश्वरानंदपुरी सद्गुरुदेव की
1: जय।
0: सत्य सनातन धर्म की जय। सभी संत ऋषि मुनि महात्माओं की
1: जय।
0: श्री रुद्राष्टकम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुम् व्यापकम् ब्रह्म वेद स्वरूपम् निजम्।

रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं

इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम शिवार्पणमस्तु। बोलिए भगवान श्री अलख पुरुषा महादेव की जय। देव पुरुषा महादेव की जय। दीप नारायण भगवान की जय। माधवानंद पुरी

की जय, श्री देव पुरुषा महादेव की जय, श्री माधवानंद भगवान की जय, विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय, आदि गुरु भगवान शंकरा

0: की जय।
1: माधव कृष्ण भगवान की
0: जय।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद ब्रज गुरुदेव भगवान की
0: जय।

0: देव की जय।
1: श्री माधव कृष्ण भगवान की
0: जय।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की
0: जय।
1: आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी भगवान की
0: जय।
1: श्री काशी विश्वनाथ भगवान की
0: जय।
1: श्री गजानन जी भगवान की
0: जय।
1: सब ऋषि मुनि महात्मन की
0: जय। बोलिए भगवान श्री देवेश्वर महादेव की जय।
1: एक और
0: वेद सार शिवस्तवः

0: इति श्रीमत्शंकराचार्य विरचितं वेदसार शिवस्तव शिवार्पणमस्तु।
1: दीपनारायण
0: भगवान की जय।
1: देव पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: अलक पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: श्री माधव कृष्ण
0: भगवान की जय।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव
0: भगवान की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।
1: ओम नमः
0: पार्वती पतये हर हर महादेव। सम

बोले श्री दीपनारायण भगवान की जय, श्री सतगुरु देवा की जय। बोले श्री दीपनारायण भगवान।

बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरी जी महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंस श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री आलकपुरी जी महादेव की जय। सत सनातन धर्म की जय।